लक्षों राशि जोन परमाया, कई जन्म सैल गिर करया। लक्षों राशि जोना की भरमदे भरमदे आया से पाशा तेरे दरबार, कई बारी असी सैल गिर करया, कई बारी असी पत्थर दी जून पहाड़ बने। ते एक एक पहाड़ दे वेखो कितना चिर लग जांदा एक जून विच, ते एक जून विच इतना चिर लगदा है ते लख चौरासी जूना विच देखो कितने समय बाद सानू ये मनुष्य जन्म मिलया। तुसे पाशा दे दर ते सारे जोगड़ियां करी से पाशा, बहुते फेर पए किरपन को। असी लख चौरासी जूना तू फिरदे फिरदे हुण तुहाडे द्वारे ते आए हां, हुण किरपा करो। बहुते फेर पए किरपन को, अब किछ किरपा कीजे।

थक आए कर बंदना अखबार थक पर्यो प्रभु दरबार थक आए प्रभु की शाम चार कुंट दस परमे जोन अनेक बिखे प्रम आयो आए अनेक जन्म प्रम शरणी लख चौरासी जुना परम दे पाशाह तुहारे द्वारे आए हां आए अनेक

अंगद अनंत मूर्त निज धारी अगम ज्ञान रस रस्योहियो। गुर अमरदास करतार कियो वस वाहो वाहो।

कहूँ महाराजन को दीजत अनंत दान, कहूँ महाराजन ते छीन चित लेत हो, कहूँ बेदरीत कहूँ तास्यों बपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ सरगुण समेत हो।

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उसनों मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उते, जिस वेले उसने दुश्मन नू दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें, गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहूं सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दियो, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़के कह दियो आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दियां, हजारां लोग तुहाडे कोल आ। ये पहल तू करनी है। प्यार असा देना है, लेना नहीं। देवे तो ठीक है, पर असी कहने इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाइए। ना भाई, वो नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी। भावे कोई मोमन वेख रहा है, भावे कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मुंह विच देंदा होया एक कोई पुकार है, केड़ी

कऊ जच गंधर्व उरग कऊ विद्याधर कहूं भय किन्नर पिसाच कहूं प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कऊ हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब हो के पुराण को पढ़त मत कतहूं कुरान को निदान जान लेत हो काऊ बेदरीत काऊ तांस्यों बपरीत काऊ त्रिगुण अतीत काहू सर

ज्ञान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत हो। कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो। कत

पंजवा वचन सखा दी टहल सेवा माण होंदया भी अवस्था होंदया भी सिख दी टहल सेवा दो प्रकार की कहें थोड़ा चेत आ जाए सिख दी टहल सेवा मैं भी करा दो प्रकार की जी

दानी अकल ना कर, क्योंकि मैं स्टेज ते बैठा कथा कहना बने ता परहेज नाल दस रहे हैं। तो अपने को भी लेना लगी पीछे नकली दी दो चार ते रोज एहो जे केस आंदे है। बाबा जी हजूर साहब जाना किराया ते सतनाम भला हो जाए, तेन दो महीने पहले तो दिता जी हजूर साहब का किराया यो आया वा जी। कुछ होर बंदियां ने कहा सी साडी मुंदरी चढ़ाना साडा चढ़ाना, उहदे पिछे मैनूं जाणा पै रिहा, पता नहीं हुण कईआं को की कुछ लिया नकली। कार्ड आ जाए व्याह है जी मदद करो, असीं फिर बाबे दे आ खुल के कही दा तू कार्ड ले आया मदद ली गया तो हां जी व्याह है बच्ची का व्याह है, उसी आप कथा की थी टैर सेवा कर ली। फिर कार्ड फड़ के कही दा कि सच दस जिवें साडे कोल कार्ड लैके आए किन्नियां संस्थावां कोल कार्ड लैके मदद मंगणगे, जे सच दसेंगा तो आ 1300 रुपया ही, जे नहीं सच दसेंगा फिर कई वार सेवा नहीं करनी। कहिंदा जी ये 13वीं 14वीं संस्था है सतनाम। मैं कहा तू तो फिर धी दे व्याह नूं व्यापार बना ले, इथों भी लै लो उथों भी लै लो उथों भी लै लो उथों भी लै लो, ये तुसीं वेखणा है नकली भी है। वाकई जेड़ा कोई गुरसिख है नाम जपण वाला है आर्थिक पक्षों कमजोर है ओदी बच्ची दा व्याह है, एक तो जरूर जा भावें 10 मिनट लई जा, तेरे जाण नाल ओदा माण वधेगा, एक ओनू 4 गुणा सगन भावें लिफाफे च दे आ इसे बहाने नाल। एक इस दुनिया की मैं गल नहीं कर रहा, जे गुरु नानक वेले का इतिहास फरोलो ना, दो भरा सुनते हो ना सूरज प्रकाश शिया गजन दोनों भाई आए सतगुर की शरण आई, दोवे शिया गजन विआह सी ना शिये की कुड़ी का, वो बरात जदों आई सी तो उन्होंने आंदियां कहता जी बरात 7 दिन 7 रातां रुकेगी, क्या कहने उदो रवाज हुंदा सी बरातां 2-2 दिन रुकदियां सी 2-2 रातां, हुण ते रवाज बदलते जा। उन्हें कहा 7 दिन ते उन्हूं फिक्र लग गया सी आम चारा सिख कहिंदे जिन्ना लाका सी फिर उन्हें हर कोई अपने घरों क्यों दोवे नाम जपण वाले आखो सतनाम करना 7 दिन 7 रातां पढ़ो साखी। कहिंदे पदार्थ वंडींदे रहे ने बरात छकदी रही संगत छकदी रही तोट नहीं आई संगत बढ़ गई आखो सतनाम।

अनंसार का पाठ करके कीर्तन की समाप्ति अरदास होगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद की देख बच्चिया वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वह भी प्रवान करनी तो आओ हम अनंसार का पाठ सारे मिलकर करिए अन गुरु नानक पातशाह मेहरबान सतगुरु आप जी दे प्यार वाले गुरसिख माई पाई साहब जी जिन्होंने आप जी ने बख्शिश करके ए दात बख्शी और आप जी दे दरबार ही जुड़ के आप जी दे बख्शिया खजाने सतगुरु आप जी दे पवित्र पावन शब्द का आदर करते हैं कीर्तन भेट गाउण अरदास कराते हैं अंतरगामी गुरु जी आप अपने गुरसिखा बच्चे बच्चिया नामदान बख्शो कारोबार च वादे बख्शो सिखी जीवन सत्संग की दात बख्शो

है पठान कम कदी कीता नहीं। तीन दिन हो गए खादा कुछ नहीं, मजदूरी करनी आंदी नहीं, मांग के खाना शान दे खिलाफ समझदा है। पर गुरु साहब जी कहंदे ने दुख तदे जा विसर जावे, भुख व्यापे बहु विधता। इंसान दुखी उदू हुंदा है जदों ओ रब नूं भुला दिंदा, क्योंकि रब नूं भुला के ओ माड़े कर्म करदा, विकारां विच पै जांदा, फिर शरीर नूं रोग लग जांदे। ते जिहड़ा इंसान रब तों दूर नहीं हुंदा ओ कदी दुखी नहीं हुंदा। दुनिया विच निगाह मार के देख लो कि चमक दमक वाले किन्ने क सुखी ने, असी लोग किन्ने क सुखी हां अपने अपने मना विच खुद देख लई। ए राजकुमार भुख बड़ी लगी, पैसा कोल कोई नहीं, मांग के खाना शान दे खिलाफ समझदा है, पर कहंदे ने भुख बहुत बुरी। एक पिंड विच ए जिवें दाखल होया, किसे कुल मंगण दी हिम्मत नहीं पैंदी। एक छोटा जिहा कतूरा देखिया, उस कतूरे नूं इस युवराज ने चुप के कच्छ विच मार लिया कि किधरे अग मिले इनू भुन के खावा। मन कहंदा ए हराम है, ए नहीं खाना चाहिदा, पर पेट कहंदा हलाल है क्योंकि भुख लगी हुई। पिंड दे बाहर आया, किधरों अग मिले इनू भुन के खावा। दूर सारे एक काफला नजर आया, उस पासे तुर पिया। इसने देखिया कुछ आदमी समान बन दे पए ने, कुछ नौजवान बजुर्गां दी सेवा करदे पए ने। ए उन्हां दे कोल जाके खड़ा हो गया, इस नूं खलोता देखिया। उस काफले विचों दो आदमी कोल आए, पुछ देने भाई कौन है तू, की चाहिदा। ए पठान राजकुमार उन्हां दोनों आदमियों वाल देख के बड़ी हैरानगी नाल पुछदा है, तुसी गुरु नानक दे सिख हो? क्योंकि मेरे अब्बा हजूर क्या करदे सन कि गुरु नानक दे सिख सिर ते पग बनदे ने और ओ दाढ़ी भी रखदे ने, सिर दे वाल भी रखदे ने। तुहाडे सिर ते पग है, दाढ़ी भी है, कि तुसी गुरु नानक दे सिख हो? ओ कहन लगे हां भाई असी गुरु नानक दे सिख हां, पर तू कौन है? इसने अपनी सारी हालत दसी कि किवें मेरे चाचे ने राज बदले, मेरा सारा परिवार खत्म कर दिता है। उन्हां दोनों सिखां विच एक वैद भी सी, उन्हें अंदाजा ला लिया ये काफी दिनों का भुख है। पठान है एक राजकुमार, जे मैं इनू कहां तो कई दिनों का भुख है, इनू बुरा लगेगा। सिख ने कहा खान साहब कुछ फल फ्रूट खा लो, असी सारे
आनंदपुर साहब अपने गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के दर्शन करने जा रहे हैं। तू भी साडे नाल चल, हुण फल वगैरा खा लो, अगे चल के असी तुहानू प्रशादा छकावांगे, खाना खुआवांगे। इस राजकुमार ने वह कतूरा उथे ही रख दिता। इन्हां

सारी संगत रुकी, लंगर तैयार होया। एक पासे कीर्तन हो रहे है, एक पासे लंगर पक रहे है। उन्हां सिखां ने इस राजकुमार वास्ते खिचड़ी बनाई, जिदे विच देसी घ्यो पा के इनू खाण वास्ते दिती। कईयां दिनां दा भुखा सी, इह खिचड़ी खा रहे है। सारी संगत इहदे दुआले बैठी है, इह सारिआं दे मूंह वल देखदा है। सारिआं दे मूंह ते इसनू प्यार नजर आया, अखां विच अपनापन नजर आया। सारे इहदे कोल बैठे ने कि किसे तरह असी इहनू खुश करिए, इहदी खुशी प्राप्त करिए, इह दुखी ना दिखे। खिचड़ी खांदा इह राजकुमार रोण लग पिया। इहनू रोंदा देखिआ तां सिखां ने पुछिआ, ऐ युवराज की गल है, तेनू किसे ने कुछ कहा है, तू रोण लग पे है? ए राजकुमार रोंदा होया कहन लगा, नहीं, रोना इस करके आ गया, एक पासे मेरा सक्का चाचा जिन्हें राज बदले सब कुछ खत्म कर देता, और एक पासे तुसी गुरु नानक दे सिख जिन्हां नाल मेरा कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं। ए तुहाडा प्यार देख के मेरी अखां विच अथरू आ गए। ए सुन के उन्हां संगतां ने कहा, ऐ युवराज ए ते असी हां, तू चल के देख

0: कोई विरला जो गुरमुख अवस्था नु पहुंच गया जिसने इतनी कमाई की है। महाराजा हीरा सिंह नाभा कहता है कि मेरे मन की वह ख्वाहिश भी पूरी होगी जो मैं कहते मेरे इच्छा सी कहते मैं इन्होंने ही गुरु नानक के दर्शन किए हैं। इन्हों का रोम रोम कहते जो है मैं वाहिगुरु वाहिगुरु जपदा प्रतीत किया है। बोलो
1: सतनाम श्री
0: रोम रोम। बाबा सुंदर सिंह नू कई गुरमुखा ने सिखा ने बेनती की कि कोई नाम की अवस्था रोम रोम भी कोई अवस्था होंगी है। महापुरशा ने अपनी ढो कंध दे नाल लगा ले ते सिखा नू सिंघा नू कहा भी तुसी कंध दे नाल कन ला के सुनो। जदों ओ कन दे नाल कंध अपना कंध दे नाल कन लाउंदे हन तां उहनां नू की आवाज आउंदी है उस दे विचों भी वाह वाह वाह। उहनां ने ढो लाई हुई है क्रोम रोम दे विचों ते कंध दे विचों भी उहनां नू फिर वाहिगुरू वाहिगुरू दी आवाजां आउंदी हन। बाबा सुंदर सिंह जी आंदे जीवन की ऐसी कथा होंदी है। सो गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे सिर्फ ये नहीं बोल के ही यह अवस्था है। यदा मतलब यह नहीं समझ लेना कि अपने बोलना ही नहीं है। बहुत सारे सोचते हैं बी वाहिगुरू वाहिगुरू बोलना पता नहीं इसका फल घट है ते फिर कोई अवस्था जाके नहीं। सो भावे गुरमुख हैं वह जबान नाल भी जपते हैं बिना बोलियां तो भी उन्हों का अपने आप ही नाम जप हों। जिवें हुण आप कोशिश करो बैठो अखा मीट के बैठे हाँ ते अपने अंदर ही कंठ हिरदे नाभी दे विच वाहिगुरू वाहिगुरू जां मुख दे विच अपने मुख दे विच हौली हौली वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू अपने अंदर कोशिश करो। फिर जे असीं साडे अंदर जप हुंदा होवेगा फिर तां साडा मन टिक जावेगा नहीं फिर अपना मन फुरने फुरने करेगा ते फिर जी करेगा मैं उठ पवां जां मन टिकदा नहीं है। बोलो
1: सतनाम श्री
0: वाहिगुरू। जे असीं बैठ के अखां मीट के अपने अंदर सिमरन होवेगा फिर मन टिक जाएगा। बोलो
1: सतनाम।
0: जे सिमरन नहीं होवेगा फिर नहीं मन ने टिकना। सो अखा मीट के पंज मिनट इस तरह नाम जप के देखो कि अपने आप जप हुंदा है कि साडे रोम रोम दे विचों कोई आउंदी है सा सिर का कोई श्वास रुकते हैं

लीला चणलत वखाण दा अंतर जामी ठाकुर पावे। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज भगत जयदेव बारे उपदेश करते हैं, जिस तरह के आप कल दे दीवान विच विचार कर रहे सां, जयदेव नामा बिप सुदामा तिनको कृपा पई है अपार। जयदेव त्याग्यो अहंगमेव नाई उदर्यो सैन से। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो संसार ते कि कैसे गुरु हन, जिन्हां ने अपनी गोद दे विच हर धर्म हर वर्ण दे भगतां नूं अपनी गोद विच बिठाया, ना इत्थे कोई जात पात दा सवाल, ना ऊंच नीच दा, इत्थे इक्को ही उपदेश है, सबे सांझी वाल सदाएन कोई ना दिसे बहरा जी। इत्थे कोई बेगाना नहीं, ये वक्री गल है। अगर साड़ी सोच किसी नूं बेगाना समझती है, गुरु की नजर विच कोई बेगाना नहीं। भगत जयदेव केंदली पिंड विच पैदा हुए, जिस तरह के कल आपां विचार कीती, छोटी उम्र विच माता पिता मर गए, माता पिता दे चलाणी दा मन ते बह बड़ा गहरा असर होया, माता पिता दे चलाणी दा मन ते गहरा असर होया, छोटी उम्र तो ही वैराग लग गया। माता पिता दी याद विच गीत गाया करदे सन, पर माता पिता दा इहो ही वैराग हौली हौली प्रभु दा वैराग बन गया। फिर इन्हां दे चाचे ने तोखे दे नाल इन्हां दी जायदाद अपने नाम लिखाणी चाही, पर इन्हां दे चाचे दा ही घर सड़ गया। फिर भगत जयदेव अपना घर बार चाचे नूं दे के जगन्नाथपुरी वल चल पए। रस्ते विच जद बेहोश होके डिगे तां कृष्ण जी महाराज ग्वाले दा रूप धार के आए, भगत नूं दुध पियाया, होश विच लियांदा। भगत जी जगन्नाथपुरी दे अस्थान ते पहुंचे, इत्थे भगत जी दी बड़ी सुभा होण लग पई। ताइक पंडित अपनी लड़की दा रिश्ता भगत जयदेव दे नाल करके चला गया। भगत जी ए जड़ी लड़की जिसका नाम पद्मा है, इसनों अपने नाल लैके हुण वापस अपने घर केंदली पिंड आ पहुंचे हैं। ए केंदली पिंड बंगाल दे विच है। घर आके अपना गृहस्थी जीवन शुरू कीता, और इत्थे ही आके भगत जी ने गीत गोबिंद ग्रंथ लिखना शुरू कीता। ए जड़ा गीत गोबिंद ग्रंथ है, अज भी इस दे भजन जगन्नाथपुरी दे मंदरां विच बड़ी श्रद्धा दे नाल गाए जांदे हन। गीत गोबिंद ग्रंथ लिखदे हन, उस प्रभु दे गुण गांदे हन। इस गल दा जिक्र
भाई गुरदास जी ने अपनी पौड़ी विच इस तरह बयान किया। आओ जिन्हें माई भाई बैठे हो एक बारी सारे करो रसना पवित्र।

अखर पढ़ प्रतीत कर, होय विस्माद ना अंग समावे, वेखे जाए उजाड़ विच बिरख एक अचरज सुहावे, गीत गोबिंद संपूर्णो पत पत लिखिया, अंत ना पावे भगत हेत प्रगास कर, होय दयाल मिल गल लावे, संत अनंत ना भेद गणावे। भाई गुरदास जी बयान करते हैं कि संतां विच उस अनंत परमात्मा विच कोई फर्क नहीं, पर यह भी याद रखना संत ओ जिन्हां दे जीवन भगत जयदेव वर्गे हैं।

हम बन बन जाओ और मैया कारण कारण कमल अबोल रहा बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जो जन्म तुम्हारे लेके चरदास आस लगा।

जिस तरह कोई बच्चा रिड़दा होया किसे चीज नू पकड़दा। नामदेव जी ने अग विच हथ पाया ते मां गोना बाई

अगर किसी ने सोलह सिंगार किते हो, अगर कोई अमीर भी बहुत हो गए और श्रृंगार भी सारे किते हो, ते जे उदी नक ना हो ते वो चंगा नहीं लगता। प्रणवत नाम देव नाके बिना नासो है पति सुलखण। बेशक सारे श्रृंगार किते ने, पर जे नक नहीं ते इंसान चंगा नहीं लगता। इस वास्ते भगत जी ने कहा, तेरे को सारे सुख ने, माया भी बहुत है, रहने वास्ते घर भी है, दुनिया का हर सुख है, पर जे तेरे को परमेश्वर का नाम नहीं ते समझ, जिस तरह नक तू बगैर

पर मैनू ते राम दे बराबर ही सोना चाहिए। जे दे सकदे हो तां जरूर दे। सेठ हंकार विच हसे है, तकड़ी मंगाई, तकड़ी दे एक पासे वह पत्ता पे है तुलसी का जिदे उत्ते राम लिखे है। ते सेठ ने हसदिया

उस वक्त इस शब्द का उपदेश नामदेव जी ने किया। उन लोगों को उपदेश जेड़े कर्म कांड करते हैं पर मन में

देव बदलावन दे। मैं ते इक रमैया दा नाम जपदा ते ओदे बदले सारे देवी देवते छड़ दिते ने। इस करके ऐ भाई जिस अकाल पुरख ने